श्रीमन्नभिसवनाशिनलोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरगिन्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीमन्नभिसवनाशिनलोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीस्वामिपुष्करनिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोद्धिनो हर।